गावन तुदन पौन पानी बेसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गाव तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न खीसर जुग जुग वेदा नाले

संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम नाम पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर

कार्य कागे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ।

Une una vesa cosat space vatre sharia ten kavan khalave kavan chugave man me simran karya savnidan das ast sidan ठाकर करतल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया

करे हर पूजा जी, तब तापे जबे बेअंता, तेरे नेक पड़े वो सिमर शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़े अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुझे आपे पावे सोई वरत्या जी, तू आपे करे सोई। तुझे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुझे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जन होई। आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई। राहो सब तेरी, तू सबनी त्याया।

पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याहूं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो।

सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मोहद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत।

तर सब हूं। जेते बदन से सब धारे, आप अपनी बुझ चारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद हर आलम।

दीनी कहूं भूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट प्यो शंकरी कैठा सिगरी शिष्ट दिखाए अचंभव आद जुगार शुरू स्वयंभव आमरक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख सुंगरो दुष्ट ते उठवत पाता सगल मलेश का रोरण काता जे अस्तु तब सड़नी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याई है ताके काल निकने है

रिद सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट शास सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताए उबारा। जिन नर नाम त्यारो कहा, दार दुष्ट दोख ते रहा। खड़केत में सन तिहारी, आभा दे लो बारी। सर ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सबराता। किल विक सकल देख को हरता, दुष्ट दोखीन को शय करता।

विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सतर हमारे मरिये देख देख जग में दो चल राख्या मोय ओ न दल

अपना जान करो बदपारा तुम साहिब मैं किं कर तारा दा जान दया तू बारो हमरे सब बैरियन संगारो।

जोर कर बचन कहा सिर न्याए, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। दोहरा

साध साध जानो नहीं बात सो बात विवाद। ग्रंथ सकल पूर्ण कियो पवद कृपा प्रसाद सवैया।

सिमरत शास्त्र वेद सबै बो भेद कहे हम एक ना जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हरगोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई आए सुठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए करुणावन दावेताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई हुए सहाय।

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

दारू सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त ना कह मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरे, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरे। प्रभ सिमरत काश बिगल ना लागे, प्रभ कै सिमरन अनदन जागे। प्रभ कै सिमरन भव ना ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व दान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नाव निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन विनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होय सफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जने आप सिमराय, नानक ता कै लागो पाय। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरै मूचा। प्रभ कै सिमरन त्रिसना बूझै, प्रभ कै सिमरन सब कह सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए। प्रभ जी बस है साध गिरसना, नानक जन का दासन दसना।

पुरुष प्रधान प्रभु कौ सिमर से बे मोहताजे प्रभु कौ सिमर से सर्व के राजे प्रभु कौ सिमर से सुखवासी प्रभु कौ सिमर सदा विनाशी

राय चले। जह मुश्कल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोड पाव पर हरे। गुरु नाम जप मन मेरे, नानक पाव हो सूह कनेरे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाह करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निह तरे।

जन कोय। श्लोक बहु सात्र बहु सिमृति ही पेखे सर्ब डडोल, पेखे सर्ब टडोल पुरुष नाही हर हरे। नानक नामे अमोल अष्ट

पाप पुण नहीं ले पा। निरतन कहो तान तेरो नाओ निथावे को नाव तेरा थाव निमाने को प्रभु तेरो मान सगल कटाको दे वह दान करण करावन हार स्वामी।

जस कहै जेह प्रसाद सुनहे करनाद जेह प्रसाद पेखे विस्माद जेह प्रसाद बोलहे अमृत रसना जेह प्रसाद सुख सहज बसना जेह प्रसाद हत कर चल है जेह प्रसाद संपूर्ण फल है जेह प्रसाद परम कद पावे जेह प्रसाद सुख सहज सुमावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लांघ गुर प्रसाद नानक मन जागहु।

नहीं भरपूर। साधु की शोभा का ना ही अंत, साधु की शोभा सदा बेअंत। साधु की शोभा उते उठी, साधु की शोभा मुझ ते मुची। साधु की शोभा साध बने आई नानक, साधु प्रभु भेद न पाई श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख है, बिन कोई नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल।

साथ राष्ट्रपति चरण सात सत परसनहार पूजा सात सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणे आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता

पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म एक आव नहीं कर परम सहस सियाण पलाया न जाइये नानक ऐसा गुरपिट भागी पाइये सफल।

जब एक है हर अग में पार, तब नरक स्वर्ग कह कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सह सिपाह, तब शिव शक्ति कह।

सब धर्म संत जना सुनहे शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बहन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सद किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एकंकार अनक कला लखी न जाए अनक कला लखी नह जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कावन निकट कावन कहिए दूर आपे आप आप भरपूरे अंतर गा दिस आप जनाए नानक तिस जने आप जाए सर भूत आप तारा सर्व नैण आप एक

सच सोचाए सोच न हो भई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो भई जे लाए रहा लिबतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पहार सह सियाण पाला खोहे ता इक न चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल मुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई।

असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमो।

असंग कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंग मलेश मल पख खाहे, असंग निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भाव है

ब्रह्मांड मंडल बरपंडा कर कर रखे तारे सेई तुदनु गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन नरचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिसदी वडियाई जो तिस भाव है सोई करसी हुगमना करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रह नर जाई मंदा संतोख शर्मपत झोली ध्यान की

अनकाल अनभूत अंग आभा अभंग मत गतमित अपार गुणगर उदार मनगन प्रणाम निरभय निकाम अद्वित प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म आदर्श धर्म सर्वापर्णाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंद प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकर नृणाम कामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र भरती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र गाले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्या चतुर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाहे न चित्र न मित्र परे है पवित्रा प्रतिशय अतिशय दृश्य आकृष्य भगवती छंद प्रसाद कथ थे कि आशिज देसा के आप इज बैसा के आ गंज करम के आप अंज भरम के आप इज लोक है के आदत सुख है के विभूत भरने के विभूत करना है के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुझा है के आशोक भरने के सर्वा अपरण है के जगतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनुप है।

वार्नर अमांड अनुभव नास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंग आसन अभंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिशा अभंड जल थल महन दिशा बेअंत अनुभव ना तीर्थर्तुर हास आजान बाह एक सदाह ओंकार आद कथनी अनाद कलखंड ख्याल गुर बरकाल घर घर प्रणाम चितर नाम अंश जगात अज जनाबाद अंश अंजगात अंदरंज बात अंटुट भंडार अंठट पार अटीठ सर मत ठीठ कर मन वरण आनंदाता महन धरबोल मना शांत त्वा प्रसाद करुणालय है अरकाल है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववारण है तृतक तरण है जाके करण है मन मान्य है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपा जपे अथपा थपे अकर्ता करता है मृता मृत है अमृता मृत है करुणा करता है कर्ता करते हैं धरणी तिरत है मधेश्वर है परमेश्वर है अकृता करता है मृता मृत है अजबा करते हैं अमृता आमृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नर नायक है सर्पायक है पापंजन है अरगंजन है रपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वा कृत है कर्ता करें अर्थ अरे परमात्मा सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो

अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अभरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासेन्द्र कामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधरमंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी गरिमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियं करें गरिमल रिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पाशाह दसवीता प्रसाद स्वये श्रावक शुद्ध सिमा श्रावक शुद्ध सुम श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख प्रयोग कर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत कौन देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रतिब्र एक रत्ति के माते मतंग जरे जर संग अनुप तरंग उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप लिपत न्याव सीसना जात बिचारे एते भय तो कहा पय भूपतंत को नागे पाए पधारे जीत भरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के हिंसत हिंसत गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राजा जारे भूत भविख भवान के भुपत खाउन करे ने जात बिचारे श्री बस श्री भगवान बजेवनंद गुंद के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान संजम ने मनेक सिख है वेद बरान कदेव ग्रान जमीन जवान समान के पेख है पावन हार जति जतार सब सब सब चार हजार देख है श्री भगवान भजेबन भुपते करतीबन एक न लिख है शुद्ध सभा दुरंद बा सुसाजना दुरजान दलांगे भारी गुमान परे मन कर भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तुर अरीर मरोर मुवासन वाते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बटे बरियार बचारे सार की धार पशैया तोर देश मिलंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़ नहार सो बातन चकचार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक नेक सो एक दवैया दानव देव नंद साजर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैतुन पापन के बह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फ्रैजक सत्र स्वय अवलोक छपेंगे मानव इंद्र विजेंद्र नात बजौन त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्मेश्वर बिशन सचिव तंत फसेजम फास भरेंगे जे नर श्रीपद के परा सहभग दे नर फेर न देह तरेंगे कहा भयो जो दुवलोचन बूंद कै बैठ रे हो भग ध्यान लगायो नाथ फरियोरिय सास समुद्र लोग प्रलोक गवायो बास क्यों बख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साज कहूं सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तनि पर पायो काहुल पाहन पूछत रहो सिर काहुल लिंगर लटकायो काहुल कर वाची दिशा में कहु पशाह को शीस निभायो कहु बतान को पूजत है पास कहु मृतान को पूजन दायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कहु बतान को पूजत है पास कहु मृतान को पूजन दायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग

सुरसन पावई सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निगना दिन गेरा है और जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबद सतरा सहस पण जाए।

पीने आप साजियो, आप पीने रचियो नाओ। दोई कुदरत साजिए कर आसुन डिठो चाओ। दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ, तू जानो ही सब सहते लैसे जिन कवाओ। कर आसुन डिठो चाओ, कर आसुन डिठो चाओ।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा है तुदा के लख करोड़ सच्चा सरतान सच्चा सबजो सच्ची तेरी शिव सच्ची सारा सच्ची तेरी कुंज सच्चे पातशाह नानक सच तिहाई सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
1: वड़ी वड़ी थाओ वड़ी

0: श्वास साधन के प्राणी श्वास जो स्वाद भी जो स्वाद को के स्वाद को स्वास पद विश्वास लहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा
1: विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुजन पूरे भाग भला पहला
2: कुदरत दिसै कुदरत सुने कुदरत पाओ सुख साल कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

पंडा अंड जेर जुत पूजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए के सवाले सबना जिल करते करना किया चिंता भी करनी था सो करता चिंता करे जिन पाया जागृति सुहारी स्वस्थ स्थिति बाण।

0: जाहो करी ना होई बलहारी कुदरतवस्या बलहारी कुदरतवस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा सैफ से सवालो जिन की तीसो पार पया ओ नानक करती की पाता जो किछ करना सो कर रहा भला दूजा
1: जो शब्दम व्याल शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है खत्री शब्दम सूद शब्दम सूद शब्दम प्राकृत है सर्व शब्दम एक शब्द मुझे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: एक कृष्ण सर्व देवा देव द्वात आत्मा आत्मा बास देव से

साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस पवित्र शब्द विच गुरु तो उपदेश किवें लेना है। हिरदा शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जिहदे विच ये पवित्र वस्तु पवे। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह सानूं प्रमाण दिंदे ने दुध दा।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दे आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। तनारियां नाल जरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी सदके सां सुवासां संग निभाया। तिन्हां समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियाय। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाये। खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पहदे सदा सहाई दितार जी ओ श्री ननकाणा साहिब।

माता पिता की याद विच करवाई जा रही है। सच्चे पातशाह जी अपनी सेवा आप कृपा करके लै लेनी, सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। छेवें श्री खंड पातशाह साहिब की सेवा, भाई तीर सिंह बीबी हरजिंदर कौर समूह सिद्धू परिवार वालों शुकराना करदिया होया सच्चे पातशाह जी करवाई जा रही है। कृपा करनी जी तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनिया। अपना मेरा प्रयास रख के अपनी सेवा आप लै लैनी सच्चे पातशाह जी। इस वेले सच्चे पातशाह जी रमदा की खुशी लैके आप जिया दे हजूर देग सज के हाजिर है।

तू कर घड़े अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरुष समाना एक दाते एक पे खारी जी सब तेरे चो विराणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आप खाना जो सेवै तुझी जन नान तिन करवाना हर त्यावे तुझी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भय जन हर त्याया जितन त्रुटी जमकी फासी

तूने चल करता सोई तुदे आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करी सोई तुदे आपे सिर सब पाए जी तुदे आपे सिर सब कोई जन नानक गुण गावे करते के जी यो सबसे गजन होई आ सम लचता तू करता सियार मेंडा साई जो तो भावे सोई थी सी।

मंडाए, पूर्व लिख लिखे कृपाया मन हरले मंडल मंडाए, कर साधु अंजलि पुन वडाए, कर डंडौत पुन वडाए, राहो साखदारा साधन जाने अंत नियंत्र हो मैं कंडाए, ज्यों ज्यों चले चवेद पावे जम काल से डंडाए, अर्जन हर नाम समाणे दुख जन्म मन पव कंडाए, अवनासी पुर पाए परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह मंडाए।

दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो वैसे खसम दे नूरिया शो कुरसों चट्टी है।

तिने गसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिस दै भाग जीव मन मंदे प्रवे अवगाही आए रस भोगन पातशाही आ मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो।

जे मोकले हो अमर दुआने दुनी के झूठे अमल करे हो महला वेला जाओ नाही ता क्या आखा के नाही क्या हुआ कीता करना कया करना भरिया बर बर दुआ आप ना बजा लोग बजाई ऐसा आगो हुआ नानक अंदा होए के दसे

मन होए आनंद। सो सतगुर कहिए मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद लही है। मेरा सतगुर प्यारा कित विद मिले हाँ खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मिलया। मेरा सतगुर पूरा इच्छ पुन्नी जन केरिया ले सतगुर धूरा। हर भगत दड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए। टोटा मूल न आवई हर लाभ नित दड़िए। जिसको हृदय विगास है पहु दूजा नाही। नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी। मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पया अत गूड़ा। हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर पै की है गोली। जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली। रहो करो विवेक संत जन भाई खोज हृदय दे कटंडोली। हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसै हर कोली। हर हर निकट वसै सब जग कै अपरंपर पुरख अतोली। हर हर प्रगट कियो गुरपूरे सिर विच ओ गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली। जन नानक अंदन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख विधाती। जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते। राम मेरा मन हर से तीराते सत्संगत मिल राम रस पाया। हर नाम है राम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते। तिनके पाप दुख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखते लिखे तुर मस्त

राम रंग राती। राम तुम्हें आपी आप प्रभ ठाकुर, तुम जीवड़ी अवना दाते, जन नानक नाम ले ता जीवें, हर जपिए हर कृपाते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, करो कृपा जग जीवना, दाते मेरा मन हर से तीरा चे, सतगुर बचन दियो हर निर्मल, जप हर हर हर मन माचे। राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे, जे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया, गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहो, जिनको प्रीत नाहीं हर सेती, ते साकत मूर नरकाचे, तिनको जन्म मरण अत पहारी, विच विष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल शरण प्रतपालक, मोको दीजे दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम कीजे, मन निरत करे करनाचे।

केशा प्रवसाचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। तुम दयाल सर्व दुख भंजन, एक बिनो सुनो दे काने, जिस ते तुम हर जाने स्वामी।

गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहो, जितने रस अन रस हम देखे सब तितने फीक फेकाने, हर का नाम अमृत रा चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया ते साकत मूड दीवाने, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने।

तन लोचक नेरी राम मेरे मन तन लोचन मिलन हर केरी गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलया आए प्रभ मेरी राव जो हमरे मन चित है स्वामी साबे तुम हर जानो मेरी अंधे नाम जपी सुख पाई नित नीवा जीवा आसर तेरी गुर सत गुर दाते पंथ बताया हर मिलया आए प्रभ मेरी अंधन आनंद पया वडभागी सब आस पूजी जनकेरी जगनाथ जगदी सर करते सब वस गत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पै जनकेरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इह मनुआ खिन ना टिके बो रंगे दै दै दिस चल चल हांडे गुरपुरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मंठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे राव हमरे मस्तक दाग दगाना हम कार्य गुरु भोसांडे पर उपकार पुन भो किया भो दुत्तर तार पराडे जिनको प्रीतर देहर नाही तिन कूरे गांडन गांडे ज्यों पानी कागद बिनस जात है त्यों मन मुख गर्भ गलाडे हम जानिया कशु न जाने आगे ज्यों हारा कह त्यों ठांडे हम पूर चूक गुर किरपा तारो जन नानक कुतरे काढ़े गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मनहरले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा ही कर डंडौत पुन वड्डा ही राव साकत हारा साधन जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलें चुवै दुख पावें जम काल सें सिर डंडा ही हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नामे आधार टीक है हर नामे ही सुख मंडा हे गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किश साध न पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया

रागौड़ी माझ महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुरपुर क्या जन्मा वड़ पागी मिल राम।

मेरे गोविंदा, गुरपुरा अलख लखाही जियो, हर हर नाम परगासिया मेरे गोविंदा, सब दालद दुख ले जाही जियो, हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा, वडभागी नाम समाही जियो, नैणी मेरे प्यारिया, नैणी मेरे गोविंदा, किन हर प्रभडरा नैणी जियो, मेरा मन तन बहुत वैरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजों धन घुम लैणी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैणी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख वैणी रहनी जियो, मैं मेलियो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भूख लगाइया जियो, हों रह न सकूं बिन देखे प्रिय मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरों हर लाइया जियो, हर राया मेरा सज्जन प्यार।

गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नामे हर बिरों लगाई जियो, मेरा हर पव मित मिले सुख पाई जियो।

हर हर गुण गाए गौड़ी गुआरी री महला पंजवा कर्म भूम में बोहो नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावे मिटे जम त्रास

जिसकी टेक मिटे मन राख गुर का शब्द अमृत रचाक अवर जतन कहो कौन काज कर कृपा राखे आप लाज क्या मानुक कहो क्या जोर झूठा माया का सब शोर कर्ण करावन हार स्वामी सगल कट कय अंतर जामी सर्व सुखा सुख साचा एहो गोरे उपदेश मन मैं लेहो जाको राम कथा में उतारी मैल जाको राम नाम लिव लागी कहो नानक सो तन वडपागी गौड़ी गौरी री महला पंजवा सुन हर कथा उतारी मैल महा पनीत पए सुख शैल वड्डे भाग

कीर्तन मन शीतल भय, जन्म जन्म के किल वे गए, सर्व निदान पीखे मन माहे, अब ढूंढन काहे को जाहे, प्रभ अपने जपहि दयाल, पूर्ण होई सेवक की काल, बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहो सब जाए, गुरपूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, गौड़ी ग्वारी री महला पंजवा, अगले मुए से पाछे परे, जो उभरे से बंद लक खरे, जे तंदा में ओ लपटाए, उन ते दुगन दिड़ी उन माए, ओ वे लाका चीत न आवे, बिन जाए ताहू लपटावे राओ, आशा बंदी मूर्ख दे, काम क्रोध लपट्यो असनेह, सिर ऊपर ठांडो धर्म राय, मीठी कर कर भी

व्यापत अंग बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कल तर संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े और बस्ता, व्यापत रूप जोवन मदमस्ता, व्यापत भूम रंग के और रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिकार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हो वासा, व्यापत गृहस्थ व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब किस व्यापत।

आवे माई गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा नैणो नींद पर दिष्ट विकार सरवण सोए सुन निंद विचार रसना सोई लो मीठे साध मन सोया माया बिस्माद इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्त ओ अपनी लहर हाओ सगल सहेली अपने रस माती ग्रह अपने की खबर न जाती मुत्सनहार पंच वटवारे सुने नगर परे ठगहारे उन तेरा कह बाप न माई उन तेरा कह मी तर भाई दर्व सियाणप ना होए रहते साध संग होए दुष्ट वसोते कर कृपा मोय सारंग पान संतन तूर सर्व निधान साबत पूंजी सतगुर संग

गुरपुरे ती मत पाइए राहु करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रदपाल अगाम्य गोचर सदा बेअंता सिमर मना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व

तिस बाणा अवर नक नहीं कीता, तुमरे बाणे परम मोह मोहया जागत नाही सूता। बिनो सुनो तुम प्राण पद प्यारे, कृपा निध दयाला, राख लियो पिता प्रा मेरे, दाथे कर प्रतपाला, जिसनु तुम्हें दिखायो दर्शन।

जाको साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बहुत साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुरु भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्ति अकाए नानकर जियो तांको देवै जांको हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ सरन प्रब तोरी आंध कूब में हाथ दे राखो कछु से आ।

अपने सेवक संग तुम प्रभ राते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे

तू सरगुणी इया तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तू ही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी संत संग हर मन वस परम मोह पहो साधी आय राव वेद पुराण सिमरत पन वेद पुराण सिमरत पन सब उज बिराज जन सुन सगल स्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिरा गोविंद लोक नहीं जन्म मरै बल बुद्ध सियान पहुमे रही अर साध सरन।

मना कर कीर्तन हुए उदार रागौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरक सुख हाण मृत दुख सुख चित सम सर

तौ लौ बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कौ तब हम सहज सोए जौ लौ पोट उठाई चल्यो तौ लौ डाण भरे पोट डार गुरपूरा मिलया तौ नानक निरभय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्ब सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहा मान इमान दो सुमाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख न आवत दुखा रंग ठाकर लाग्यो बास बासरी के स्वामी उदयान दृष्ट आग्यो निर्भव भय संत भरम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो कि

सगल बिरथे बिन नामं हर का नाम जपो मेरे मीता ए सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरन निवारे नानक जन की तूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोह कोहे बिद को समझावे कर।

पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरते जब तक संजम कर्म कमाने ओए उरे मूसेरा जाप तप संयम कर्म कमाने उरे मूसेरा बरत नेम संयम रहता तिनका आड़ न पाया आगे चलने और भाई उहा कामने आया तीर्थ

क्या किच करे के करने हारा क्या हाथ बिचारे जित तुम लाभो तित ही लागा पूर्ण खसम हमार।

0: वह कहते के जी जो सबसे का जानोई
1: असमल लाचो था तो करता सचहर मेटा साई
0: जो तू पावे सोई ठीसी जो तू दे सोई हो पाए रहा
1: सब तेरी तो सपनी ते आया
0: जिसमें कृपा कहे ते नाम रतन पाया
1: गुरमुख लादा मन मंगवाया
0: तू आप विछोड़िया आप मिलाया
1: तू तेरी आस तुझी माए
0: तुझ बिन दूजा कोई ना है
1: जी जैसा तेरा खेल
0: जो मिल विछोड़िया संजोगी मेल
1: जिसनो तू जा ना है सोई जन जाने
0: फरगुन सधी आँख पर खाना
1: जिनर सेविया तेन

0: करे पाच बेनती चौपी हमरी करो हाथ तै रक्षा
1: पूरण होए चित की इच्छा
0: तब चनन मन रहे हमारा
1: अपना जान करो पारा
0: हमरे दोषी सबे तुम कावो
1: आप हाथे मोहे बचावो
0: सुखी बसे मोरो परवारा
1: सेवक सिख सरह कर तारा
0: मोर अच्छा निज कर दया करिए
1: सब भैरन को आस संगरिए
0: पूर्ण होया हमारी आशा
1: और पुजंग की रहे प्यासा
0: तुम्हें शार कोई अवना त्या
1: जो पर चाहूं सुनते पाहो
0: सेवक सखा मारे तारिए
1: हमारे मारिए
0: आप हाथ दे मुझे भरिए
1: का त्रास न भरिए
0: हो जो सदा मारे पच्छा
1: जो करे अच्छा
0: राख लो मैं राखन हारे
1: साहिब संत साहिब प्यारे
0: दीन बांधे दुश्मन के हंता
1: तुम हो बोली चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्मा

सब कन को सब गुण सुख दियो कर के अंतर की जानत है चीटी ते कुंच रसूला संतन तक पाए ते दुखी एक एक ही पीर पछाने जबत कर तकरा कर तारा जबा कर कथो कभू चेते पंद्रह।